नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 8:57 होने को है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

साथियों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि आप सुनेंगे 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद दोपहर 1 बजे और फिर शाम 6:30 बजे, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। वंदना कार्यक्रम का समय रहेगा 9:20 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत अभी 9:40 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय सय उन्मूलन कार्यक्रम और निक्षय मित्र योजना के बारे में श्री मोहित देवड़ा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। दस बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, शाम 5 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी में फोन करे गीत सुनेगा। शाम 5:30 पर

0: आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। फिल्म संगीत का समय रहेगा 6:05 पर। कार्यक्रम माटी का स्वर आप सुनेंगे 6:20 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे एल्बम सॉन्ग। 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। साथियों, समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 पर और 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:00 हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।

प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश

0: निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया। ये अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है नीम का थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
3: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गांवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के चीतमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 में श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर सुबह के 9:20 में। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे अनुप जलोटा और हरिहरन को। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना में पहले अनुप जलोटा को।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना अनूप जलोटा और हरिओम सरन को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 में है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और निक्षय मित्र योजना के बारे में श्री मोहित देवड़ा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री मोहित देवड़ा, जो कि जिला चिकित्सालय, राजकीय जिला चिकित्सालय खींवसर में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसका प्रभार दिया गया है और ये उसके प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। बड़े जो है ये गतिशील व्यक्ति हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है मोहित जी। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मोहित जी, जब सबसे पहले हम बात करें तो हम करें जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है सरकार का, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि जैसा आपने बताया और जैसा कि हम जानते हैं कि आप इस क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का काम देख रहे हैं, तो बताएं ये कार्यक्रम क्या है।
2: सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भारत में एक समय पर टीबी अपने आप में बहुत ही भयानक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आज हमने मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि हम टीबी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक व्यापक स्तर पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका मकसद है कि भारत को पूरी तरह से टीबी से मुक्त किया जाए।
1: तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो योजना है इसके तहत जो टीबी के मरीज हैं उनका, उनकी पहचान करना या उनको अस्पताल तक लाना या उनको इलाज मुहैया कराना, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी और किसी प्रकार की उनको सहायता देना, तो वो उस कार्यक्रम के तहत जो भी आपकी गतिविधियां सरकार द्वारा और आपके माध्यम से, चिकित्सा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उस पर थोड़ा बताएं।
2: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें मेनली सबसे पहले हमारा काम होता है मरीज के अंदर टीबी को डायग्नोस करना। यानी कि कोई टीबी से ग्रसित है तो उसकी सबसे पहले जांच की जाती है। पहले जांच बहुत ही सीमित तरीकों से होती थी, केवल माइक्रोस्कोपी थी, लेकिन आज उन्नत मशीन आ गई है, ट्रूनाट और सीबीनाट जैसी जांचों के द्वारा टीबी को हम 2 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट कर लेते हैं और ये भी पता लगा लेते हैं कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो उस पर काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सबसे पहले हमारा पहला काम जो रहता है वो होता है टीबी की जांच करना, जो कि राजकीय अस्पतालों में पूरी तरह से निशुल्क है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति टीबी पॉजिटिव आ जाता है, अगर किसी को टीबी हो रखी है और वो जांच में पॉजिटिव आया, तो फिर क्या होता है कि आगे उसका इलाज चलता है। टीबी का इलाज जो है वो 6 महीने तक चलता है। गवर्नमेंट 6 महीने मरीज को टीबी की जो दवाई है वो पूरी तरह से निःशुल्क देती है। साथ ही साथ अब उस 6 महीने के दौरान टीबी मरीज के खाते के अंदर प्रति माह 1,000 रुपए आते हैं। कुल मिला करके 6 महीने के अंदर दवाई लेने के साथ साथ उसके खाते में 6,000 रुपए की लाभ राशि भी गवर्नमेंट जो है वो देती है। ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये निक्षय प्रोग्राम कहलाता है। निक्षय इसको कहा गया क्योंकि निक्षय का मतलब हुआ कि टीबी को हराना। और इसी के अंतर्गत एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, निक्षय मित्र योजना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि समाज के जो वरिष्ठ जन है, जो जागरूक जन है, उनको इस कार्यक्रम का भागीदार बनाने का प्रयास करते हैं। हम सभी मेडिकल फील्ड के लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनसे भी हमारा आग्रह रहता है कि वो भी निक्षय मित्र बने। निक्षय मित्र का मतलब ये हुआ कि आप किसी टीबी मरीज की मदद करना चाह रहे हो तो आप उसको पोषण दे सकते हो। हम किट बनाते हैं, 6 महीने इलाज चल रहा है तो प्रति माह के हिसाब से टीबी मरीज को किट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन संबंधित डाइट जो है वो ज्यादा होती है, जिसमें दालें होती है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होती है, ये सारी चीजें होती है। तो निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है, समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति निक्षय मित्र बन सकता है। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में मरीजों के लिए उपलब्ध करवा रही है।
1: जी, तो देवड़ा जी, जैसा कि आपने बताया कि निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है, तो यानी कि निक्षय मित्र से आशय यही है कि वो जो किट उनको टीबी मरीजों को दी जाए उसका खर्चा वो स्वेच्छा से वहन करना चाहे, वो निक्षय मित्र बन सकता है।
2: जी बिल्कुल।
1: या और किसी तरह से टीबी मरीजों की मदद करके भी वो निक्षय मित्र बन सकता है।
2: देखिए मूल रूप से हमने इसमें मिनिमम क्राइटेरिया यही रखा है कि आप केवल पोषण किट भी अगर प्रोवाइड कर रहे हो मरीजों को तो आप निक्षय मित्र हो। फिर उसके बाद अगर कोई निक्षय मित्र ज्यादा अगर कुछ करना चाहे तो वो आर्थिक सहयोग भी दे सकता है, लेकिन ऐसा भी हालांकि ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ज्यादा केवल यही है कि मरीज को पोषण मिल जाए और वो बीमारी से लड़ पाए, बीमारी से ठीक हो पाए।
1: प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत से किशोर भी निक्षय मित्र बन रहे हैं, तो उससे आशय क्या है कि वो आर्थिक सहयोग दे रहे हैं और किसी प्रकार से टीबी मरीजों की मदद कर रहे हैं?
2: सर टीबी को अगर अपने को हराना है तो सबसे जरूरी है कि युवाओं को इसके बारे में जागरूक करना, क्योंकि आज का युवा, आज की यंग जनरेशन अगर इसके बारे में जागरूक हो जाएगी तो वो अपने घर परिवार में, अपने समाज में जाकर के टीबी के प्रति लोगों को ज्यादा सजग कर पाएगी, अवेयर कर पाएगी। क्योंकि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि खांसी के जरिए, छींकने से, खांसने से, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है। यानी कि आप अगर टीबी मरीज के संपर्क में आते हो तो टीबी आपको भी होने की संभावना है। तो वो अपन कम कैसे कर पाएंगे अगर समाज जागरूक होगा, और नई युवा पीढ़ी जो है वो अगर इस संदेश को समाज में फैलाएगी तो उससे टीबी को हराने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसलिए यंग जनरेशन जो निक्षय मित्र बन रही है वो आर्थिक सहयोग और न्यूट्रिशन में सहयोग तो दे ही रही है, साथ ही साथ जागरूकता फैलाने में भी बहुत मदद कर रही है।
1: जी तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या गतिविधियां आप चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है?
2: सर मेरी ड्यूटी जैसे राजकीय जिला चिकित्सालय खिमसर में है, तो हमने जिला चिकित्सालय खिमसर के अंदर बहुत से ऐसे निक्षय मित्रों के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर्स, समाज के वरिष्ठ जनों को जोड़ करके निक्षय किट जो है वो टीबी मरीजों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। साथ ही हम खिमसर के बहुत सारे मतलब राजकीय स्कूलों में गए हैं, महाविद्यालय में गए हैं, वहां पर हमने बच्चों को इस टीबी की बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की, समझाने की कोशिश करी है, ताकि वो समाज में जाकर के टीबी के बारे में लोगों को बता सके और इसको पूरी तरह से मिटाने में सहयोग कर सके।
1: तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो टीबी की बीमारी है, अगर हम नागौर की बात करें, किन क्षेत्रों में ऐसा पाया गया है कि ज्यादा टीबी के, या किन परिस्थितियों में ये टीबी की बीमारी होती है, क्या किसके कारण होते हैं, और इसके मतलब क्या ये पूरी तरह से इसका जो है उन्मूलन हो सकता है, निराकरण किया जा सकता है, मरीज ठीक हो सकता है, उस पर भी थोड़ी बात बताएं हमें।
2: सर टीबी सामान्य रूप से ऐसी बस्तियों में ज्यादा देखने को मिल रही है जहां पर न्यूट्रिशन कम है, और जहां पर जो स्लम एरियाज है, झुग्गी झोंपड़ियां

0: कच्ची बस्तियां हैं, वहां पर हमको टीबी के मरीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसका कारण यह है कि वहां पर पोषण की कमी रहती है कई मामलों में, और फिर क्या होता है कि जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव होने से वहां पर ऐसी बस्तियों में क्या होता है, टीबी फैलती ज्यादा है। तो फिर क्या होता है कि मरीज एक बार अगर टीबी पॉजिटिव हो जाता है और वो समय समय पर जांच नहीं करवाए, तो वो एक मरीज कई अन्य आम लोगों को भी क्या कर देता है, टीबी से ग्रसित कर देता है। तो वहां पर टीबी ज्यादा है, और फिर बाकी तो टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। आज ऐसा कोई भी नहीं है जो टीबी से ठीक नहीं हो सकता। अगर आप समय पर जांच करवाते हैं, पूरा इलाज लेते हैं, डॉट्स थेरेपी चलती है इसके अंदर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर हम उसको टीबी की दवाई देते हैं 6 महीने तक। अगर मरीज 6 महीने पूरी दवाई ले तो निश्चित रूप से वो टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है
1: जी। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज दवाई पूरी नहीं लेता, बीच में छोड़ देता है, तो ऐसे मरीजों को वापस से दवा पुनः चालू करवाने के लिए भी कोई कार्यक्रम है?
0: बिल्कुल सर, कई बार क्या होता है कि लापरवाही कह सकते हैं अपन, या जागरूकता के अभाव में मरीज को क्या लगता है कि जैसे उसने 2-4 महीने दवाई ली, बहुत बड़ी ये टाइम पीरियड है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है 6 महीने दवाई लेना, तो मरीज को लगता है कि अब तो मैं ठीक हो गया, वो दवाई लेना बंद कर देता है। लेकिन हम मरीज को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैया एक भी दिन दवाई बंद नहीं करनी है। अगर वो ऐसा करता है तो उससे नुकसान ये होगा कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब वो क्या होगा, रिफामसिन जो इसमें मेनली दवाई काम में आती है, रिफामसिन, वो उसके प्रति बैक्टीरिया रजिस्ट हो जाएगा। रजिस्ट होने से टीबी का एक और भयानक रूप होता है, वो होता है MDR, मेडिकल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अगर वो टीबी हो गई तो वो और भी ज्यादा मुश्किल है ठीक होना। हम प्रयास करते हैं कि मरीज एक बार में पूरा इलाज लेवे और ठीक हो जाए। अगर लापरवाही करेंगे, टीबी जैसी बीमारी में लापरवाही बिल्कुल भी माफी के योग्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। लेकिन हाँ, MDR का भी इलाज है, अगर कोई दवाई छोड़ देता है तो वापस से उसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर जांच में फिर से पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसको रिफामसिन की ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करके हम उसको आगे इलाज दे सकते हैं, और देते भी हैं। कई मरीज ऐसे होते हैं जो ऐसी लापरवाही करते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें, टीबी का पूरा कोर्स लेवें।
1: बिल्कुल, तो ये नहीं है कि जैसे कई बार हम दूसरी जो बुखार वगैरह रहता है, डॉक्टर 5 दिन के 7 दिन की दवाई लिखता है, हम 2 दिन की लेके और ठीक महसूस करते हैं जनरली, तो हम छोड़ देते हैं, पूरा इलाज नहीं लेते। तो वही जो रेजिस्टेंस की बात आप बता रहे हैं कि वो चीज आ जाती है, तो फिर उस पर दवाई भी काम नहीं करती, तो वो तो बहुत खतरनाक चीज है। तो ये तो टीबी के मामले में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर टीबी की दवाई या टीबी का इलाज आपने अधूरा लिया और उसको छोड़ दिया, तो फिर वो उसका कंट्रोल करना और उसको फिर और बड़ी भारी दवाइयां देनी पड़ेंगी, तो वो बड़े मुश्किल एक जटिल परिस्थिति बन जाती है।
0: बिल्कुल सर, आप ये देखिए कि आज मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है, लेकिन फिर भी अपन आज भी 6 महीने दवाई देने को विवश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीबी किस हिसाब की बीमारी है, इसलिए इसमें लापरवाही का तो कोई चांस ही नहीं है, लापरवाही करना बिल्कुल भी गलत है। हाँ, लेकिन कई बार होता है कई कारण से मरीज लापरवाही करते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसी लापरवाही मत करो, आगे से ध्यान रखना।
1: तो मोहित जी, में हम जानना चाहेंगे कि टीबी से अगर बचाव हम रखें, यानी कि जो टीबी के कारण हैं उन कारणों को हम दूर करें और उनसे बचाव का उपाय करें, तो टीबी हो ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि भी क्या कारण जो टीबी का होता है मूल, और उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, टीबी की संभावना को कम से कम न्यूनतम किया जाए, ताकि टीबी के मरीज हमारे समाज में हो ही नहीं, और ताकि वो टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सके।
0: सर, टीबी को हराने के लिए सबसे मुख्य हथियार हमारे पास जो है वो यही है कि जागरूकता। हम जितने ज्यादा जागरूक बनेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उतना ही ज्यादा हम टीबी को हरा पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको खांसी है, हफ्ते भर से ज्यादा अगर खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, रात को पसीना आ रहा है, लगातार वजन कम हो रहा है, ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दें, तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी अस्पताल, राजकीय अस्पताल में जाएं और वहां पर टीबी की जांच, जो बलगम से जांच होगी, वो अवश्य करवाएं। ट्रूनाट और सिबिनाट जैसी आज उन्नत मशीनें हैं हमारे पास, जिससे हम 2 घंटे के अंदर टीबी को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसमें कौन सी दवाई काम करेगी वो भी हम पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि ऐसा कोई भी सिम्टम अगर मरीज को दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत से तुरंत जांच करवाए, जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।
1: मोहित जी, एक बार और जानना चाहेंगे कि अगर कोई इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल टीबी की इनिशियल स्टेज में अगर वो आ जाता है अस्पताल में और वो उसको टीबी डिटेक्ट होती है, तो क्या उसका इलाज करना अपेक्षाकृत आसान होता है या उसको भी 6 महीने तक दवाई लेनी ही पड़ेगी?
0: जी बिल्कुल, अगर टीबी मशीन के द्वारा टीबी पॉजिटिव दिया गया है तो इलाज तो 6 महीने लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। वापस से उसको टीबी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो लगभग शून्य होती है या फिर बहुत कम होती है।
1: बिल्कुल, तो इसमें हम जैसा आपने अभी बात भी की कि सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा तो प्रयास किए जा रहे हैं, समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और

0: आम जन भी इसमें जो है अपनी भागीदारी निभा सकता है। और वो सरकार ने जैसे बताया आपने कि इलाज भी मुफ्त करती है सरकार, इसकी जांच भी मुफ्त है, और ये जिला अस्पताल में तो है ही ये सुविधा। आपके अगर हम खींवसर की बात करें, नागौर की अस्पताल की बात करें, तो वहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। एक टीबी का अस्पताल अलग से भी होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, उसका भी उसका अलग से क्या रोल है?
1: बिल्कुल सर, टीबी की आजकल सुविधा तो सीएससी और पीएससी लेवल पर भी पूरी तरह से उपलब्ध है। माइक्रोस्कोपी जांच तो आपको सीएससी और पीएससी लेवल पर भी मिल जाती है, और ट्रूनाट और सीबीनाट भी धीरे धीरे सीएचसी तक पहुंच गई है। और नागौर पर
0: यानी कि
1: अपने
0: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं,
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: थोड़े गांवों में या जो कस्बे होते हैं उनमें जो होती है,
1: बिल्कुल
0: छोटे चिकित्सा केंद्र मतलब।
1: बिल्कुल वहां पर भी टीबी की जांच की सुविधा, इलाज की सुविधा बिल्कुल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपना टीबी अस्पताल है, वहां पर पूरे जिले की मॉनिटरिंग का काम होता है। साथ ही साथ कई ऐसे मरीज, जैसे मैंने बताया कि एमडीआर जो पेशेंट होते हैं, मेडिकल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो छोड़ने के बाद वापस से अगर टीबी हो रही है और वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए जो दवाई आती है वो अजमेर जोन से आती है, फिर वो नागौर डिस्ट्रिक्ट से आगे सर्कुलेट की जाती है। एक तरह से पूरा मॉनिटरिंग का, पूरे इस कार्यक्रम को, इस पूरे बड़े प्रोजेक्ट को संभालने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट टीबी हेडक्वार्टर कर रहा है हमारा।
0: जी, तो इसमें आप आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो खुद सजग रहें, बल्कि जो और कोई टीबी किया उनको लगता है कि कोई टीबी का पेशेंट है उनके जानकारी में, उसके लक्षणों को देखते हुए तो किस प्रकार से वो उसकी मदद कर सकते हैं और किस प्रकार से निक्षय मित्र बनकर भी वो मदद कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी के माध्यम से मैं नागौर के सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता। बस शर्त इतनी सी है कि आप समय पर जांच करवाएं, अगर टीबी पॉजिटिव आता है तो पूरा इलाज लें, और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। और इसी के साथ भारत को और अपने ग्राम पंचायत को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, सभी को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम और निक्षय मित्र की जो योजना है वो इसीलिए चलाई गई है कि भारत को पूरी तरह से टीबी मुक्त किया जाए।
0: तो मोहित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इस टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और किस प्रकार से हम हर व्यक्ति इसमें अपना सहभागिता निभा सकता है और अपनी योगदान दे सकता है टीबी उन्मूलन में, ताकि हमारा जो देश है वो टीबी मुक्त हो सके और ये जो हमारे राष्ट्र के, विकसित राष्ट्र के लिए, जो हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के जो भयंकर इस तरह की बीमारियां हैं वो समाज से दूर। तो आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और निक्षय मित्र योजना के बारे में श्री मोहित देवड़ा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाज़ किशोर कुमार की है, संगीत आर डी बर्मन का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, संगीत ओपी नायर का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोता हूँ, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मेरे हुजूर से। संगीत शंकर जयकिशन का, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

साथियों, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में फिल्म मिलन से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिली से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, संगीत SD बर्मन का और गीत लिखा है योगेश ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुबह के 10:30 में। अब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म दिल बोले हड़िपा से। आवाज़ मीका सिंह की है, संगीत प्रीतम का और गीत लिखा है जयदीप साहनी ने।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में फिल्म बाजीराव मस्तानी से। संगीत संजय लीला भंसाली का और गीत लिखा है प्रशांत इंगोले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म गोरी तेरे प्यार में। आवाज़ मीका सिंह, ममता शर्मा और श्रुति पाठक की, संगीत विशाल शेखर का और गीत लिखा है अन्विता दत्त ने।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। आवाज़ अमाल मलिक, श्रेया घोषाल के, संगीत अमाल मलिक का और गीत लिखा है साबिर अहमद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अनुष्का मनचंडा जी मनचंडा की आवाज़ में फिल्म दम मारो दम से। संगीत प्रीतम का और गीत लिखा है जयदीप सानी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में फिल्म बैंग बैंग से। संगीत विशाल शेखर का और गीत लिखा है विशाल ददलानी ने।

0: श्रोता हूँ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए इकाई पर यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 11 बजे अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फकीर की ये गजल।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एल्बम का नाम है सिलसिले, जगजीत सिंह की आवाज।

अब के सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर

ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्य

वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों ने

0: बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से, तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

उनकी उनके संगीत बद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना, मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

Ay, qué.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनवी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा धीरे धीरे।

शुक्रवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुचिपुलम आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

0: को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: देश की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि ये योजनाएं देश में आधुनिक और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इनसे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा और देश की माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक पहले सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां खड़े लोगों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया, जबकि जालौर के भादराजुन क्षेत्र में पहाड़ियों से झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार पाली जिले के देसूरी में 8 सेंटीमीटर, जोधपुर के झवर में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी 2 इंच तक बारिश हुई, जबकि दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 में फिर से हम आपको ले चलते हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

हम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: कमरियामा लटक हो बकरी, झांझ बजी है तो कमरियामा लटक हो बेकरी, नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवामा कटक हो बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो बेकरी,
1: नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कटक हो बेकरी।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़, कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक होई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना, उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं, कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत खास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग के साथ साथ अभिनय का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि दिलीप साहब की कितनी ही नई पुरानी फिल्में देखी हैं, पर मशाल फिल्म का वो दृश्य मस्तिष्क पर अंकित हो गया जिसमें अपनी पत्नी की बीमारी के

हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो, या जो आपको बहुत पसंद आया हो, या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मजा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नजर यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुगल-ए-आजम। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये कालजयी रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने

फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमति फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनकी एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार

तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देखकर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक
1: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय, जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो उसमें जो कलाकार है वो वहीदा रहमान है, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आंख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

जब सचमुच गीत में सागर की गहराइयां नजर भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए, एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर, महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था, क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है, जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना नहीं।

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है, तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है, तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा

0: दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
1: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में 8 दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों

0: बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है। हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के

0: पी प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार श्री रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है, अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल,
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि

0: आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
1: तो
0: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी

0: देते हैं,
1: जी
0: तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है,
1: जी बिल्कुल
0: तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी, जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी।

0: ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है, ये
1: बिल्कुल
0: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो में गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
1: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है।

0: चलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है। ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
1: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के, और

0: कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
1: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ, उस नजरिए से अगर बात करें,
0: हाँ,
1: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये
1: हाँ
0: मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो उस टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी।
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए कुछ। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि
1: जी
0: पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा। और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन मना
0: पड़ता
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूं,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पे धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था।
0: जी जी
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म दैट हैपन्ड इन माई लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
0: हाँ,
1: होंगे।
0: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या

0: आपके साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता।
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
0: हाँ,
1: अगर
0: हाँ।
1: आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशियंट टाइम दिया है
0: जी,
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी जी,
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था।
0: हाँ, हाँ।
1: हमारा शो और उनका शो KBC और वो
0: जी, जी।
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
0: जी,
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
0: अच्छा।
1: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट बात करनी है।
0: हाँ।
1: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ
1: अरे क्या हो गया?
0: अच्छा।
1: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
0: हाँ।
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। He laughed the same way the way you laughed।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं बोला मुझसे होता नहीं है।
0: तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
1: हाँ। बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे। आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
0: क्या बात, चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
0: हाँ
1: रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी,
0: जी
1: तो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक, वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था, जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ
1: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा
1: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ हाँ
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में,
0: जी जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा
1: तब हमारे रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है, मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने। हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई
0: अच्छा
1: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो,
0: अच्छा
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
0: हाँ
1: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
0: हाँ
1: अरे राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
0: ओ
1: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
0: हाँ
1: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
0: अच्छा
1: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
0: अच्छा
1: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट, टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
0: अच्छा
1: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
0: हाँ
1: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
0: जी
1: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
0: बराबर
1: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑल्सो।
0: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
1: जी
0: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
1: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है। टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है,
0: हाँ
1: आगे, और
0: उसकी एक तयशुदा तारीख है।

0: कि उस दिन वो
1: डेडलाइन
0: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
1: होना ही है।
0: जी
1: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
0: जी जी
1: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
0: जी
1: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
0: हाँ जी
1: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
0: जी
1: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
0: क्या बात है।
1: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर,
0: जी
1: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
0: जी जी
1: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स
0: बिल्कुल
1: हैं, इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
0: अच्छा
1: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
0: ये मुझे
1: पसंद है।
0: लगता है 2022 की बात है।
1: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
0: हाँ
1: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
0: हाँ
1: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
0: हाँ
1: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
0: अच्छा
1: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
0: बिल्कुल
1: वाले।
0: बिल्कुल
1: तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
0: जी
1: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
0: बिल्कुल
1: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो
0: अपना
1: और ऑडिशन भेज दो। सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: वहां पे लाइन में खड़ा होना
0: वो
1: पड़ता था।
0: दर दर भटकने वाली बात है ना।
1: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहां कुछ काम नहीं है।
0: हाँ
1: कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई को, कोई काम नहीं है।
0: ओह
1: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
0: हाँ
1: सफर है।
0: अच्छा
1: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
0: हाँ
1: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब है?
0: बराबर
1: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूं। स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ,
0: हाँ
1: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
0: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
1: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
0: हाय हाय क्या
1: गया
0: बात है।
1: और फिक्र को धोए में उड़ाता
0: हम दोनों
1: चला।
0: फिल्म का गाना है।
1: हाँ जी,
0: बेहद लोकप्रिय गीत
1: बेहद
0: है।
1: लोकप्रिय।
0: आइए सुनते हैं।
1: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्रा ये करते हैं, सुमित्रा ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ
1: जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उनका,
1: वागले मेरा,
0: मनोज
1: मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी से सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा के यहां से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वॉज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा,
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके।
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ,
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है। और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं इंसान, अगर दिल से अच्छा नहीं है तो हो
0: बहुत
1: जाएंगे।
0: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं। इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो किस पे चला रहे हैं कुछ भी।
0: जी।
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी
1: जाती है। लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
0: अच्छा,
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते थे और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी
1: वो ज्यादा मैटर करती है,
0: बिल्कुल,
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझो अपन,
0: हाँ, एक घूंट लेने की जो एक
1: घूंट
0: प्रक्रिया
1: वो
0: है।
1: है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी। तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
0: प्रयास करना पड़ता
1: प्रयास करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तक
0: है।
1: पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
0: जी
1: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं।
0: हाँ,
1: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
0: हाँ।
1: इतने इमोशन सोच के लिखी है। मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ
0: जी,
1: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
0: हाँ।
1: तो

0: जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था। फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक पारिक, और उनके साथ भी करना बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया।
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं भी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं।
1: हाँ।
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है।

0: एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ,
1: हाँ
0: हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा,
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा,
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने अच्छा
1: अच्छा
0: मतलब किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया,
1: हाँ,
0: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। धन्यवाद।
1: जी,
0: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ,
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा अच्छा।
0: मैंने बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
1: हाँ,
0: उनको बताया कि ये वही है। उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी, तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ,
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात।
1: और क्या चाहिए?
0: और क्या चाहिए?
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए,
1: हाँ,
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी रामजी लंदन वाले।
1: अच्छा। हाँ,
0: ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा।
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो।
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
1: हाँ।
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
1: हाँ।
0: गाड़ी देंगे आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं,
1: हाँ,
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो मजा तो वही है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
1: क्या बात है।
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
1: हो, आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे,

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाने सुनने वाले सभी दोस्तों को अपने दोस्त अहमद अली का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में आज हम सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें और गीत सुने। इसके लिए आपको फोन करते रहना है और अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवानी है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवाओं की और अपनी भारतीय संस्कृति की। तो दोस्तों, देखते हैं कि विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं और संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति जो है, उसका मूल आधार अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, तेन त्यक्तेन भुजन्ता और सिद्धांतवाद के बहुत से आपको मिल जाएंगे। भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने से पहले दूसरों को महत्व दिया है। समाज कल्याण के लिए दधिचि द्वारा हड्डियां त्याग देना, राजा शिवी द्वारा कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काटकर चढ़ा देना, कर्ण द्वारा अपना कवच कुंडल दान दे देना, राजा हरिश्चंद्र द्वारा प्रतिज्ञा पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना आदि उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि और महानता के परिचायक रहे हैं। परंतु आज की युवा पीढ़ी इन सबसे अनभिज्ञ है, वह इस संबंध में जानना भी नहीं चाहती। और जैसे आज के युवाओं का जो जोश है, जैसे उनकी सोच है, तो उनको ये बताना चाहिए, हमें ये बताना होगा कि किस सदी है और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि भारतीय संस्कृति के बारे में हम युवाओं को कैसे परिचित कराएं। लेकिन आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई बातें आजकल लोग सोशल मीडिया पर भारतीय संस्कृति की करने लगे हैं, जिससे ये पता चलने लगा है युवाओं को कि हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी महान है और आज हम उसे भूल बैठे हैं। क्योंकि ये जो भारतीय संस्कृति है, ये हर बात पर टोकती है,

देश देती है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान बताती है और अच्छे विचार बताती है। जबकि पश्चिमी सभ्यता अधिक उदार और खुलापन लिए है, इसलिए भारतीय युवा उसके प्रति ज़्यादा झुकाव होने तरफ रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस ज़माने में और भी दूसरे ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारतीयता की संस्कृति को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जानने के पश्चात दूसरों को बता भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये होना चाहिए ताकि हम सब अपनी संस्कृति के बारे में ध्यान दे सकें, पहचान सकें और हमारी जो ये संस्कृति है वही हमें श्रेष्ठ बनाती है विश्व में। और हमारी पहचान है कि हाँ, भारत का मतलब एक उदार, एक शालीन और एक चरित्रवान युवा। जी हाँ दोस्तों, यही भारत की असली यानी ओरिजिनल पहचान है। तो ये थी आज की बात और अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। आज का जो युवाणी में है, फ़ोन करें गीत सुने, तो हमारे पास फरमाइशें आ चुकी हैं। तो पहली फरमाइश हमें भेज दी है बीआर मिर्धा कॉलेज से अनवर हुसैन ने। इन्होंने सुनना चाहा है हिना फिल्म का ये गाना।

दूसरा कॉल हमें आया है शास्त्री नगर नागौर से, फरमाइश करने वाले हैं कुंभाराम चावला। इन्होंने सुनना चाहा है दोस्त फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

हमें किया है फरमाइश भेजने वाले हैं। अमर सिंह कॉलोनी से मुकेश शर्मा, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म प्यार ही प्यार का ये गाना।

अगला कॉल हमें आया है, उन्होंने फरमाइश की है, नाम है चांद मोहम्मद अजमेरी गेट नागौर से। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म शराबी के इस गाने की।

अगली फरमाइश हमें आई है, फरमाइश भेजने वाले हैं तेलीवाड़ा नागौर से पप्पू हलवाई। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म धर्मवीर का ये गाना।

अगली फरमाइश भेजने वाले हैं प्रेम कुमार चंपा सर से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म सावन को आने दो का ये गाना।

ये था युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने कार्यक्रम। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के फरमाइश हम शामिल नहीं कर पाए उनके नाम हैं अनूप सिंह अलायस से, गोपाल राम बोसरी से और नियाज पेंटर लोहारपुरा नागौर से। तो इसी के साथ अब युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त अहमद अली को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, आओ पेड़ पौधे लगाएं। सबको देनी है यह शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। पर्यावरण को जो ना बचाएंगे तो हम धरा पर ना रह पाएंगे। जीवन का यही आधार है, पर्यावरण भी हमारा परिवार है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, मैं रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारी सखियों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हमने चांद पर कदम रख लिए, लेकिन जिस धरती पर हम रहते हैं उसे बचाना भूल गए। पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ गंदी हो रही हैं, हवा जहरीली हो रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। सखियों, पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर का आवरण, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर ही जीवन का चक्र चलाते हैं। अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। आज ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई इसी असंतुलन के कारण हो रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। सबसे पहले क्यों? जीवन के लिए। हमारी सांस हवा से, प्यास पानी से और भूख अनाज से बुझती है। ये सब प्रकृति ही हमें देती है। अगर पेड़, नदी, हवा खत्म हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज हवा में धुआं, पानी में गंदगी और प्लास्टिक की वजह से अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। साफ पर्यावरण मतलब स्वस्थ जीवन। जंगल कटने से तापमान बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा, तूफान बार बार आ रहे हैं। पेड़ और हरियाली ही धरती का तापमान कंट्रोल करते हैं सखियों। ऐसे में इन सभी कारणों को समझते हुए सखियों, पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पर कैसे, ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

सखियों, पर्यावरण बचाना मतलब अपना भविष्य बचाना। इसे बचाने के लिए बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे कदम ही काफ़ी हैं। जैसे हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाएं, पेड़ काटने के बजाय नए पेड़ लगाएं, घर स्कूल गली में गमले और बगीचे बनाएं। सिर्फ पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी परवाह अपनी संतान की तरह करें। फिर बात आती है कि प्रदूषण कम करें, जैसे गाड़ी की जगह साइकिल या पैदल चलें, तेज आवाज में म्यूजिक या हॉर्न ना बजाएं, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, स्कूल मोहल्ले में सफाई अभियान चलाएं और दोस्तों और परिवार को पर्यावरण के बारे में बताएं। याद रखें सखियों, बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक कदम से बदलाव आता है। अगर आज हमने ठान लिया तो कल धरती से फिर से नया भविष्य आता है। तो सखियों, भारत सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, एक पेड़ माँ के नाम जैसी योजनाएं चला रखी हैं। 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की शुरुआत हुई, ताकि पूरी दुनिया एक साथ पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचे। तो इस प्रकार से सखियों, पर्यावरण कोई चीज़ नहीं जिसे हम बाज़ार से खरीद लेंगे, ये हमारी सांस है, हमारी ज़िंदगी है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी हमें मुआफ़ नहीं करेगी। याद रखें सखियों, प्रकृति से हम लेते बहुत हैं, देते कुछ भी नहीं। अब देने का समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना फ़र्ज़ पूरा करें। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

प्यारे सखियों, अभी आप सुन रहे थे हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। प्यारे सखियों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफल हो, लेकिन अक्सर प्यार के चक्कर में हम सहायक की जगह निर्णायक बन जाते हैं। हम तय करते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। ये सोच बच्चे के भविष्य के लिए सही नहीं है। निर्णायक बनने से क्या नुकसान होता है, बताएंगे आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: सखियों, महिला जगत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि बच्चों के करियर चुनने में निर्णायक नहीं सहायक बने। निर्णायक बनने से क्या नुकसान होता है? दरअसल सखियों, ऐसा करने से रुचि मर जाती है। अब बच्चा वो काम करता है जिसमें उसका मन नहीं लगता, फिर वो ना पढ़ाई में अच्छा करता है और ना ही जिंदगी में खुश रहता है। दूसरी बात, ऐसा करने से बच्चे में आत्मविश्वास कम होता है। उसे लगता है कि उसके फैसलों की कोई कीमत नहीं है, वो डरा डरा रहता है। और तीसरी बात, टैलेंट बर्बाद होता है। हो सकता है बच्चा अच्छा आर्टिस्ट या खिलाड़ी या बिजनेसमैन बने, पर हम उसे जबरदस्ती अपने मन का सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। ऐसे में सखियों, एक ही बात याद आती है कि पिंजरे में रखकर पंछी से उड़ान की उम्मीद मत करो।

आसमान उसका है, बस उसे पंख दे दो। जी हाँ सखियों, बच्चे के करियर निर्माण में हमेशा सहायक बने, निर्णायक नहीं। अब बात आती है वो कैसे, तो पहले बच्चे से पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसकी बात को बिना काटे सुनो, मजाक मत उड़ाओ। हर फील्ड के बारे में बताओ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, डिजाइनर, शेफ, आर्मी, हर फील्ड का फायदा और नुकसान दोनों बताओ। फैसला बस उस पर छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात सखियो, अपने बच्चे का टैलेंट पहचानो, उसी के अनुसार ही उसे गाइड करो। अगर वे फेल भी हो जाए तो मैंने कहा था ना, मत बोलो, बल्कि कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, ये बोलना हो। इस प्रकार सखियो, बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं, हम चाहें तो उसे बर्तन बना सकते हैं या मूर्ति। निर्णायक बनकर हम बर्तन बना देते हैं तो सिर्फ एक काम आता है, और सहायक बनकर हम मूर्ति बनाते हैं तो अपनी पहचान खुद बनाता है। इसलिए प्यारी सखियों, हमेशा बच्चे की करियर में निर्णायक नहीं, सहायक बने। अब बातों को विराम देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे एक विलेन फिल्म का ये गीत, प्यारी सखियों। बारिश का मौसम सबको बहुत पसंद आता है, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और कागज़ की नाव। लेकिन इसी मानसून के साथ कई बीमारियां भी आती हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। नमी, गंदगी और रुका हुआ पानी बैक्टीरिया और मच्छरों को बढ़ाता है। अगर थोड़ी सावधानी ना बरती जाए तो सर्दी जुकाम से लेकर डेंगू टाइफाइड तक हो सकता है। इसलिए हम सभी को मानसून में संक्रमण से बचे रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है घर के आसपास या कूलर और गमलों में पानी जमा ना होने दें। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं और रात में सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें। तो सखियों, हम आपको इस संबंध में कुछ बातें और भी बताएंगे, पर अभी लेंगे ब्रेक।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, ब्रेक से पहले हमने आपको मानसून में संक्रमण से कैसे बचें इसके बारे में थोड़ा बताया था। सखियों, इससे बचने के लिए सबसे पहली बात, आप साफ पानी पिएं। सिर्फ उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। बाहर का पानी और बर्फ ना लें। बासी, खुला हुआ या तला हुआ खाना ना खाएं। फल सब्जी को अच्छे से धोकर पकाएं। घर में पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी लगाएं। फुल बाजू वाले कपड़े पहने। रोज नहाएं। गीले कपड़े ना पहने। हाथ बार बार साबुन से धोएं। गर्म सूप, हल्दी वाला दूध, अदरक तुलसी की चाय पिए। फल और हरी सब्जियां खाएं। इस प्रकार से क्यों मानसून का मजा तभी है जब हम स्वस्थ रहें। थोड़ी सी सफाई, सही खाना और सतर्कता, ये सब हमें हर प्रकार के संक्रमण से बचा सकते हैं। इसलिए याद रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है और आपको सतर्क रह

इसी के साथ सखियों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को पाना ही असली हुनर होता है। तो अब दीजिए इजाज़त अपनी सखी रईसा को। नमस्कार।

7.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर

0: दो विस्फोट हुए, इनमें चार पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश। फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजें हैं।

ये गीत अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म खानदान से, आवाज़ लता मंगेशकर की थी, और ये है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम प्रेम रोग। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे कि आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी का स्वर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बिहारी लाल वर्मा के गाए कुछ लोक भजन, और यह कार्यक्रम का पहला लोक भजन बिहारी लाल वर्मा के ही स्वर में

0: मार्टिकस्वर कार्यक्रम में आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी नागौर का चिन्ह चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ बोलो मैं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से भेंट की। इस दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मिले। उन्होंने जनहित परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं के विस्तार पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। श्री शर्मा ने कृषि मंत्रालय में आयोजित अहम बैठक में भी हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े विषय और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने वीबीजी रामजी लागू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया।
2: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने ग्राम चौपाल पहल की भी सराहना की। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण की देरी पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि कृषि कार्य में लिए जा रहे ट्रैक्टरों से आरसी रिन्यूअल में एक साल की देरी होने पर ₹500 माहवार की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹2,500 निर्धारित की गई है। गैर परिवहन दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी होने पर ₹300 महीने की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹1,000 तय की गई है। ये विशेष राहत इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। मॉनसून आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में और आगे बढ़ा है। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर से होकर गुजर रही है। इसके अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के भागों में आगे बढ़ने के आसार हैं। इससे जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में झमाझम बरसात का अलर्ट है। इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की मध्यम बरसात का ये सिलसिला अभी बना रहेगा। हालांकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। आज डूंगरपुर के गलियाकोट, सागवाड़ा और निठाउवा में कभी तेज तो कभी हल्की बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा बीती रात लुनखंदा गांव में हुआ, जहां एक ही परिवार के लोग फसल की रखवाली के लिए खेत पर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इन्हें कनेरा CHC लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। मॉनसून के दौरान बिजली जनित हादसों की रोकथाम के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उधर पाली में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ऑयल बॉयल्स बनाई गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि एंटी लार्वा के लिए ये बॉल्स काफी कारगर हैं।
3: ऑयल बॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर हम लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या दो या चार घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है, जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी बीसीएमओ को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया है।
1: जयपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना श्यामनगर क्षेत्र में 200 फीट बाईपास पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उधर पाली जिले में नेशनल हाईवे 162 पर मोड़ भट्टा इलाके में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने केलावा खुर्द में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज पूरी दुनिया शांति संतुलन के लिए भारत की ओर आशा से देख रही है, ऐसे में हमें सनातन संस्कृति को मार्गदर्शन का आधार रखना चाहिए।
4: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने समुद्र की दूरी को दोनों देशों के बीच का सेतु बताया। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद की नीति में विश्वास रखता है।
5: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल, मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।
1: श्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए हर्ष और गौरव का विषय बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
6: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
1: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि डूरंड कप देश के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति भवन में ट्रॉफियों का अनावरण टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक हासिल किए। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा। वहीं पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर परिषद सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, पंचायती राज और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नामांतरण, सीमा ज्ञान, प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावड़े ने बताया कि ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पिछले दिनों जिले में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य स्थानों पर 1154 बूथ बनाए गए। पहले दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई। अभियान के दौरान जिले में 3,65,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। आकोली ग्राम पंचायत में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया गया। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम शाह पूंजाजी गेनाजी खेल स्टेडियम में हुआ।
7: सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद विभाग के अनुसार जिले में 73,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। कृषि विभाग की ओर से तीखी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यशाला रखी गई। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जांच और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने के साथ ही प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग की टीमें घर घर जाकर 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चला रही है। अभिभावकों से सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आहोर ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा बैठक पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पेयजल तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिले में पिछले दिनों रोजगार उत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 506 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सहकारिता सप्ताह के तहत जिले में ग्रीन कोऑपरेटिव दिवस मनाया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस योजना में 519 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा और 64 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले में जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति और जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। उधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दुर्घटना संभावित स्थानों पर संकेतक लगाने, आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जिले में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। जालौर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा, सायला, बागोड़ा और सांचौर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों ने मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की बुआई शुरू कर दी है। तालाबों और एनिकटों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रहा। दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश का विकास में जुड़िया खास मुद्दा मासे चर्चा कीनी। राज्यरा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा। आवता 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बारिश सारू चेताईचियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान नवाजी जिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली में न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। वे उपभोक्ता मामलात, खाद्य और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सागे भेंट रहे दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने असरदार तरीकों लागू करण और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा कीनी। श्री शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही मिलिया। वे आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मिलर प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं ने बधावन रे बारा में बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुई मिलिया। श्री शर्मा कृषि मंत्रालय में राखी जी खास मीटिंग में शामिल थिया। खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका मुख्यमंत्री कहो के इन दौरान राज्य रा खेतीबाड़ी हलकाओं जुड़िया मुद्दा और योजनाओं रा बारा में चर्चा करी जी। वे VBG रामजी लागू करण सारू कृषि मंत्री रो आभार जतायो।
2: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार क्योंकि वहां के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गांव को उसका फायदा मिलेगा। गांव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
8: ई मौके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो कि राजस्थान रा गांवई हलका माए विकास और काम धंधा रा मौका बधावण जुड़िया काम संतोषजनक तरीकों चल रहा है। वह ग्राम चौपाल पहल री सराहना कीनी। राज्य सरकार ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिका ने पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण माए मोड़ो विवरण पर लागण वाला अतिरिक्त शुल्क माए राहत दीनी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा बतायो कि खेतीबाड़ी सारू काम आ रहा ट्रैक्टरां रा मालिकाओं आरसी रिन्यूअल माय एक साल रो मोड़ो विवरण पर 500 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 2500 रुपया वेला। गैर परिवहन स्कूटर मोटरसाइकिल री आरसी नवीनीकरण माय मोड़ो विवरण पर 300 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 1000 रुपया फैला। आ राहत ई साल 30 सितंबर ताई मिलेला। प्रदेश रा लंकाओ आतुणी हल्का माए चौमासा री बिरखा वेवण लगी है। फिलहाल मानसून री उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर वेती निकल रही है। इनरे आवता दो दिन माए बीकानेर संभाग और आरएसआर रा हल्का माए आगे बधवा रा आसार है। इनु जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता दो तीन दिन गरज सागे हल्की बारिश रा आसार है। उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला माए बारिश सारू चेताई चियो है। इन बीच राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब 10 जुलाई बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। आज डूंगरपुर रा गलियाकोट सागवाड़ा और निठाउआ माए में बरसबा रा समाचार है। ए बीच चित्तौड़गढ़ जिला रा कनेरा हल्का रा लुणखंदा गांव माए बीती रात बिजली पड़ जावण तीन जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा ए लोग साखा री निगरानी सारू खेत माए सुता हा। पुलिस वाना कनेरा सीएचसी लेगी जठे डॉक्टर वारी मौत रो ऐलान कर दिनो। चौमासा माए बिजली पड़बार कारण हादसा री शंका न ध्यान राखता थका अजमेर विद्युत वितरण निगम जनताओं सावचेती राखण री अरज कीनी है। तेज आंधी और बारिश रे दौरान बिजली रा खंभा ट्रांसफार्मर और बिजली री लेणाओं दूर रेवण री राय दीरी जी है। ई बीच पाली माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू चिकित्सा विभाग तेल री गोलियां मनाई है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि मच्छर पनपाऊ रोकण माए ओ जुगाड़ घणो काम रो है।
3: ऑयल वॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या दो या चार घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉयल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है। जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया है।
8: जयपुर रा श्याम नगर हल्का माए 200 फीट बाईपास कने आज तेजी जा रही एक ट्रक फुटपाथ माथे उबा 5 जना न गचरती ना। हादसा माए 3 बच्चा री मौके ही मौत वेगी जबकि 2 जना घना जख्मी फेंक्या। पुलिस मामला री जांच कर रही है। पाली जिला माए नेशनल हाईवे नंबर 162 माथे मोड़ भट्टा हल्का माए एक तेज रफ्तार कार रे डिवाइडर टकरा जावण रे कारण कार माए सवार 5 जना जख्मी वे क्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर के केलावा खुर्द माए राखी जिया धार्मिक कार्यक्रम माए शामिल भिया और जनसभा ने संबोधित कीना। इ मौके वे कहो के मानवीय मूल्यां ने विचार व्यवहार और दिनचर्या माए शामिल करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष कहो के आखी दुनिया शांति और संतुलन सारू भरत ओड़ी उम्मीद री निजरू देख रही है और माने सनातन संस्कृति ने मार्गदर्शन री बुनियाद बनावनी चाहिए।
4: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो सही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
8: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहा। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीच आज इंडोनेशिया री राजधानी जकार्ता में बातचीत हुई। इन दौरान दोनों देशों बीच रणनीतिक भागीदारी ने मजबूत बनावन रे बारे में चर्चा करी ची। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, खेतीबाड़ी और नवी प्रौद्योगिकी समेत न्यारा न्यारा हल्का में भांत भांत रा करार माथे सही करी ची। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया री संसद नई संबोधित कीना। वाना भाषण में श्री मोदी समुद्र री दूरी ने दोनों देशों बीच रो पुल बतायो। भारत और इंडोनेशिया बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रो जिक्र करता थका प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद रे खिलाफ एका माथे जोर दिनो। वे कहो कि भारत विस्तारवाद रे बजाय विकासवाद री नीति माए भरोसो करे है।
5: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।
8: इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी ने बधाई देता थका इन्हने भारत रा हर रहवासी सारू माथो ऊंचो करण री बात बताई। वे कहो के ओ इनाम दुनिया माए भारत रा बधता मान और भरोसा री निशानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन रा सांस्कृतिक केंद्र में डूरंड कप फुटबॉल 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट री ट्रॉफी ने न्यारी न्यारी ठौड़ घुमावन रा कार्यक्रम री आधिकारिक शुरुआत फेंकी। ये मौके राष्ट्रपति टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली सगली टीमां और खिलाड़ियों ने शुभकामनावां दीनी। श्रीमती मुर्मू खिलाड़ियों खेल भावना राखता थका बेहतरीन खेल रो दर्शाव करण सारू कहो।
6: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
8: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मौजूद हा। ध्यान जोग है कि डूरंड कप देश की मान्योड़ी और ऐतिहासिक फुटबॉल होड़ है। थाईलैंड रा पटाया में भी 20 सालों कम उम्र रा खिलाड़ियों री एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रा पहलवान सोना रा 4, चांदी रा 7 और कांसा रा 9 तमगा जीतिया। महिला वर्ग में भारत 184 अंक लेर उप विजेता रही, जबकि पुरुषों रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत री टीम 152 अंक सागे तीजी ठौड़ माथे रही। दूजकानी क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच 5 T20 मुकाबला री सीरीज रो तीजो मैच आज रात नॉटिंगहम में खेलो जावेला और मैच भारत रा समय रे मुजब रात 10 बजे शुरू भेला। केंद्र सरकार चीन री फौज रे भारत में 60 किलोमीटर अंदर ताई घुस जावन रो दावो करन वाला सोशल मीडिया माथे चल रहा वीडियो ने गलत बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रे तथ्य जांच इकाई इन्हें फर्जी बतायो है। इकाई ई वीडियो ने भरमावन वालों बताता था का कहो का इनरो भारत चीन सरहद कोई लेनो देनो नहीं है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रा दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश रा विकास जुड़िया खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। प्रदेश आ घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में हाजिर मैं आप रणवीर भाई और मारे हाथ हाजिर हुआ है मनोज भाई। तो मनोज भाई राम राम।
2: हाँ राम राम रणवीर भाई आपने और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला बाया बाया और नैना टावरा ने गणा हेतु गणा कोडू राम राम।
1: वासा घने मानसून नमासम हुआ मनोज भाई देख कहाँ के ओ मौसम रो पलटो जो को हमके कई दिनों चाले कणी बादलिया मंडेर कणी देखो हमें तो पाचो है जो को अपन मानसून भी जगह जगह के प्रवेश करियो।
2: आज देखो आज ये समाचार माय नहीं हो कई तन तो अजमेर गना रुकियोड़ो हो अब अपन नागौर गना प्रवेश भी आज कर ले मनद लागे बार अपन चौपाल मत आया ने आंधीर बादलार छहेड़ा दिखिया
1: एने देखो रूप में एक मेरे मानना एक भाई दो तीन दिन आर माने कटी उदयपुर कोटार बटे तो जोरदार बिरखरी चेतावनी भी दी थी और भाई लोग जका ने फसला खरी पूरी बाई उड़ी है वे तो आंखिया फाड़िया उड़ी के कई दिन पहले जकी बाई दिन के भाई फसला हमें है जो तिश करे टाइम माते जे बिरखा हो जावे तो कह तुम्हें कहे के पानी रा पग हरिया हरियाली जद ही रहे जद इंद्र भगवान टेमो टेम है जो बिरखा करे।
2: नहीं नहीं भाई मेहरबान रही उम्मीद पूरी है आजकल मायने एक दो दिन मायने बरसात जोर की उजाई
1: गणखरा भाई है जो कई देखो पहली है जो अगेती फसल बाई कई मूंग बाया तो कई बाजरे बाई एरिन ने सागे सागे देखो कई तो मोट भी बाया पर जका भाई देखो मोट रीर गवार रीर खेती हमें करी भाई खरीफ री फसल माने जका बिरखाऊ डीके है हमें करी तो वे भी है जो इन टाइम रे माने मोट गुआर री खेती कर सके है।
2: बिल्कुल बात आप मोट की छेड़ी मोट की करा कई भाई बरसात ना डीके अब थली के मायने आप क्या जिको बाजरा मूंग मोटर असल तो अभी वही जे मानसून वाली बरसात का तो
1: पहला तो देखो
2: मानसून
1: पहला तो देखो के एड़ा मोट बाईस था जिका भाई निब्बे निब्बे दिन आता है पकता कोने के देसी मोट बवारा मैं तो एड़ा बीज भी है जिको आ गया जिका 60 दिनों में पक जाए तरह तरह की अपना कृषि वैज्ञानिक है जिका है जिको किस्म निकाल दी।
2: बिल्कुल
1: तो वहां किस्म है जिको नाम भाई ने बताया था।
2: तो देखो भाई अब रणवीर भाई को जगह मोट भावे तो अबार की जी की ताजी किस्म तगड़ी है वे है CZM2 जी की 65 दिन लगा 67 दिन में पक पूरी तैयार हो जाए और उपज की बात करा तो चौकी बरसात हुए चौको मौसम हुए तो 8-10 क्विंटल प्रति
1: यानी कि हवा से बिगर मान 8-10 क्विंटल तक पैदावार हुई।
2: बिल्कुल सही है और एक किस्म है RMO40 अभी 62 लगा 65 दिन में तैयार हो जाए और 6-9 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार भी देवे और बीज दर की बात करा तो 10-15 किलो प्रति हेक्टर के मायने बोना चाहिए
1: भाई। एमो जकी भी किस्म है जो भाई आप रे जचे है कि भाई अपन तो आ किस्म बाणी जकी बा सके भाई इन अलावा और भी किस्म है कि
2: और है RMO225 और RMO435 ये दोनों ही किस्म है जिकी 62 दिन ले 65 दिन मायने पक पूरी तैयार हो जावे और 6-8 क्विंटल प्रति हेक्टर है जिकी उपज पैदा करें और बीज बोन की दर भाई 10-15 किलो प्रति हेक्टर है।
1: और जो देखा हर एक फसल रे माने कई बार देखण में आवे है कि भाई रोग भी कोई लाग जावे तो हमें भी कई बार एडी समस्या आवे
2: हमें भी आवे तो देखो जीवाणु पत्ती धब्बा रोग अगर लाग जावे तो 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी मायने मिलाप्रोर राइबोजियम के साथ PSB कल्चर प्रत्येक हेक्टर के मायने अगर आप छिड़काव कर दा और 3 किलोग्राम 3 पैकेट किधर हेक्टर छिड़काव कर दे तो रोगों बचाव मिल सके। बात करा आप सिंचाई की हाल तो बो जरूरत तो पड़ी सिंचाई की
1: भाई जका भाई बरानी खेती जका बिरखा माती ले तो बरसात नहीं उड़ी के बरसात हुई पर कई भाई ने जका ने पानी रो साधन है सिंचाई रो साधन है कुआ है ट्यूबवेल है और कई विद्या सिंचाई करे तो वन है जो उन दिन रो ध्यान रखना पड़े
2: और बाबी गाय।

0: जमाने रोग पैदा कम हुआ है। और फसल में रोगी पौधा ने देखा तो उखाड़ कर रोग फेंकना चाहिए। पहला रोग वाला फैलाव नहीं हुए, दूसरा जमीन में जीवाणु की संख्या कम हो जावे और अगला वर्ष तक रोग प्रकोप एकदम खत्म हो जावे। यहाँ की चीजों को ध्यान रख रहा
1: एड चीजा नो हैजू को ध्यान किसान भाई राख और जैविक खेती ने जे बदाओ दे ही तो हैजू को जैविक खेती का फायदा ही फायदा। अपने जमीन स्वस्थ रही, अपनो अनाज स्वस्थ हुई और पचे अनाज ने जका जीम ही बे हैजू को स्वस्थ रही।
0: एक बात कृषि एहलकार और भी कह रणवीर भाई, पौधा की नत्रजन की आवश्यकता की पूर्ति आप
1: मेरे वास्ते भी
0: कई चीजा को ध्यान रख कर करना तो अपनी पौधा की पेड़ पौधा की या फसल की पैदावार चौकी हुए। यानी एक ही फसल अबार अपा बात करी हर बार नहीं बोवा, फसल चक्र अपनावा, वर्ष में एक बार दाल वाली फसल बोवा, यानी बाजरा मक्का जवार तिल बो दिया सर्दी के माए चना मसूर बोवा, गेहूं जो सरसों के बाद माए चौमासा की फसल के माए मूंग मोट उड़द मूंगफली आदि बोलावा। यानी फसल चक्र अपनावा तो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, नत्रजन की क्षमता बढ़ी।
1: इन तरह से है जो फसल बदली स्थिति रहे है जना है नत्रजन की पूर्ति है जो मतई हो जावे जमीन कर ले। ये बात तो मनोज भाई हुई एरा मैं लेवा ब्रेक।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो आप काम की बात सुने, अब भाया का आप कोई भाया का अनुभव भाया ने सुनाया करा आप चौपाड़ों बतावा भाया जी का ले रहा है। आज किसा गांव गए यार क्यों बातचीत करी?
4: मैं आटे ने आथुन और उतरा दो कुंटा है जो गियो एर बटे एक भाई मिलिया एडा मेहनती जिसका बाग बगीचा न माने खेती करे 12 है जो हम चार पुचार बे तो नुई नुई एडी खेती री विद्या बताई जो है जो अचंबो हो के भाई एडी खेती है जो किसान भाई कर कीकर पैदावार बदावर कीकर फायदो ले तो भाया ते पूगती करा
3: करो भाया ते पूगती
4: तो लो हुनो।
5: आज एक किसान भाई मिलिया है जट चारों तरफ दिखे है हरियाली आना पूछा हमचार राम राम शाह।
6: राम राम शाह
5: कई नाम आप रो?
6: मारा नाम अन्ना राम जी सब गांव कालड़ी।
5: ओहो कालड़ी इन गांव रहे उन नाला तो मने अन्ना राम जी हरियाली चारों तरफ जोरदार दिखे कई बात
6: मिया ने के कटी तो बरसात पहली होगी कटी बाद मुगे जकी रोहिणी हरी बाज जाए बे बड़ी जोरदार है।
5: ओहो
6: और मिर्गारी भी मिर्ग लागते ही भाई बे भी जोरदार है बाद भाई ना मैं थोड़ी खेती बाजरी धीमी बाकी मूंग हर कोई किसान के बढ़िया है।
5: ओ मूंग बढ़िया बाजरी भी पहला वाली चौकी
6: चौकी है
5: पर मने आटे आप रे एक बगीचो हो जाए वो लग है।
6: हाँ कालड़ी में एक अनार और बगीचो कहीं फार्म है अड़ाई रहा है अशोक जी जांगू कोम जी जांगू मार बहुत बड़ो फार्म
5: है। कहीं पानी रो कहीं साधन है आटे पास?
6: पानी रो साधन टूबेल है और चौमास में जो आम बरसात है
5: भाई बरसात रो पानी मिल जावे टूबेल री खेती तो टूबेल में कहीं पानी मीठो जमीन
6: नहीं मीठो को नॉर्मल बारी है बट कहीं मोटो डैम बनाओ कोई मतलब 1,000 लीटर को
5: ओ घणो मोटो डैम है
6: मैं 1,00,000 लीटर मानो आप नॉर्मल नीचे कोई लाख आ रहा हूँ
5: जट पानी भेड़ो हो जावे
6: मैं लैमर माँ भाई कहीं करे टूबेल है जगह पानी चला रही टूक लियो पानी पीड़ो रहे ना तो नीचे है मिट्टी आवनी आज देसी मिट्टी है कहीं रेत है पीली मेरे मां नीचे एक पंप लगोड़ो पांच पानी उठाने मोटर वो कहीं है भारी पानी हुई ना खारे की मात्रा वो नीचे रहती लवण की मात्रा मान लो अपन सल्फेट की मात्रा मान लो जो भी तेजाब की मात्रा वो रहती नीचे ऊपर आ जी हड़को पानी मैं ऊपर लो पानी है देखो रोज रो मतलब 1,000 लीटर पानी पौधा में देवा क्योंकि 5,000 पौधा था आपका अंधार का और भी बाद में आपका देखो गूगल का पौधा है।
5: तो अन्ना राम जी थे पचे अटे कितने टाइम हो इन बगीचे में रहो?
6: मन ने कंटिन्यू 10 साल होगी बाटली की शुरू कर रही ना सिरगणे इसमें आप और आज यहाँ था
5: भाई अटे है जो पूरी मेहनत कर रही हो?
6: नहीं मेहनत में कोई

0: में कौन रखा ऊपरले नाम ले भगवान को या शब्द जसना दियो जी ज्ञान प्रयास करियो है
1: अनारा तो देखो घना ही लगाउड़ा इरे हाथ एक नाम बतायो आप गूगल
0: गूगल रो पौधो भी है 10 साल
1: गूगल ओ कहीं काम आवे
0: ओ काम आमने मतलब बड़ो हुई अजी टाइम लागे बनने में उम्र भी काफी है और बनने में भी काफी आम खेजड़ी जड़ बनी से मतलब कांटाड़ पौधो है
1: इरी भी खेती हुए
0: खेती हुए ओ तो गूगल धूप पापा जको धूप खेवा ने कान गूगल खेवा है बिम काम आवे
1: बिम में
0: बड़ो हुई जना आपा कुआर क्यों भी टाटा ठोका जन में दूध आए दूध बनी गूंद का पहला अबे भी निकले खुशबू आ रही आप
1: इतना मोटा पेड़ हुई
0: इतना बड़ा पेड़ हुई
1: ए है जो पौधा आप कद देख लगाया
0: हां पौधा ने भी कुछ 9-10 साल हो गई
1: 9-10 साल हो गया
0: लेकिन आज बार टाइम लगे क्यों बहुत धीरे धीरे बढ़ रही गूगल
1: ओ धीरे बढ़वार करे
0: पानी दी जरूरत को नहीं इन्हें चीजें मतलब पक्को
1: ओ पक्की जगह
0: पथरीली
1: पथरीली
0: कंकड़ है पीली पक्को धड़म
1: तो आ गूगल की खेती भी अपन इने इलाके में कहीं हो सके
0: आराम बेधड़ के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं
1: तो ए किता खे जो रोंकड़ा आप लगाया
0: भाई मैं रोंकड़ा तो काफी लगाया पर मारा नारा बिचा आप तेरी मना रहे अड़न लागी जन मैं मारे हिसाब हो रहा क्या फिर भी है और मेरे बाद में नींबू रो पौधा है बटे पेम जी बोल रहे आप अगर मतलब बहुत सारे मतलब पौध माला है कई तरह की है सब्जी रो गिरने उस भी है
1: भाई सब्जी भी लगे उड़ी है
0: सब्जी में कई बार लगा ली खूब है जो आमने गाजर है पानी माने भिंडी माने और लौकी मैंने घीओ
1: अबार
0: सब्जी अगर भाई कौन क्योंकि यहाँ पकड़ आज भी कौन है भागा दौड़ में कोई
1: काम अच्छा पहले बावड़ी ही
0: पहले बावड़ी
1: तो सब्जी पचाए कैडी ले वो कई तो जूं देखो के
0: अरे वो है तो देखो जैविक है ओ है तो प्योर जैविक ऑर्गेनिक
1: जैविक खेती ले वो
0: हाँ ऑर्गेनिक जैविक ना रहे तो ऑर्गेनिक जैविक है इनमें कोई तरह
1: का पूरी है जो को फसल ला चाहे बागवानी की बात करा चाहे दूसरी फसल
0: जैविक है सर
1: पूरी
0: और मैं हमारे घर है ना खुद रहे प्योर बाजरी एकदम ऑर्गेनिक रखा हमें नया तो यूरिया फेंका नया डीएपी नया कोई तरह सब करा ठीक है मुंगा में तो भागले ही करे धंधे कह तो ये करे
1: जन अन्नाराम जी
0: और फार्म है ना प्योर ऑर्गेनिक है में कोई तरह की कोनी ठीक है कोई भाई गवार करने भाई जो तेल जो है बात अलग है बाकी
1: तो जन अनाराम
0: देसी सप्रे हुआ
1: आज जो बावरी बात करा तो पता आज
0: की बावरी बात भी देसी अलग बावरी सा
1: देसी अलग कहीं पता लगे
0: हाँ ज्यादा लगे पता नहीं थोड़ा ज्यादा लगे यू मिलने गाँव में भी रेट भी नीचे दा
1: खास कर सब्जी की बात करा तो सब्जी बारे जावे अटे बिके
0: बारे जा रही अटे कितनी बिके भाई अनार भी बाहर जावे कितना बिकी कौन
1: बारे पता कंटेनर
0: कंटेनर
1: कट कट भेजो
0: क्यों हम अटे सीधे भरी जो कंटेनर मान लो हमारा कोई एक साइड में उतर मैं जाना पंजाब हूँ आगे कोई जम्मू मान लो अन्न है जगह नासिक और पौधा भी आम है जगह ऑर्गेनिक लाउडा ना नासिक थोड़ा 3 साल तो दो
1: ऑर्गेनिक की पौधा है लाउडा
0: हाँ
1: और भाई है जो कि फसल है परी बारे है जो कुछ जगह जगह जा रहे
0: मतलब मोटर कंटेनर भर जाओ बारे और जो कहीं लेबर आवे बहुत सारी लेबर चाहिए जितना दस साल परमानेंट अभी है
1: इनमें खास कर कितनी मेहनत करनी पड़े
0: जबरदस्त मेहनत किसान हुई ना मैंने बैंकर मेहनत करनी पड़ी मेहनत बिना के नहीं
1: जब आप गूगल की बात करा तो जगह
0: गूगल में कम मेहनत
1: है में कहीं करना
0: गूगल में अपन कोई ज्यादा मेहनत को नहीं 5-10 दिन पानी गाल देना और पके रहा लगा देना लगाओ जन थोड़ी खाद आना बाकी वो तो यही हुए भाई देखो भेड़ और बकरी की खाद हुए ना मैं ही करना मेरी कोई होड़ी कौन करे
1: भाई मेहनत की खाद बराबरी कौन है
0: बराबरी कौन है भाई नहीं हुए तो आप नागनी किसी गाय गोबर आम मेंशल
1: गोबर की खाद
0: और भेड़ बकरी ऊंची कोई खाद कौन है
1: यहाँ पानी है तो 10-1 दिन पानी दे देना
0: गूगल में 10 दिन दो 8 दिन समस्या में तो गूगल में देने जरूरत
1: क्यों इनके अलावा और कोई खेवटा इन में करनी पड़े कहीं
0: नहीं गूगल में थोड़ा नीचे वहाँ कटिंग करनी पड़ी अनार में कटिंग करनी पड़ी
1: अनार
0: नीचे पतझड़ हुआ 12 महीनों एक बार पतझड़ मौसम आया करे बोले चैत महीना भी पहले पहले यहाँ पर कर लाना कटिंग जन पौधो तकड़ो है खूब लागूड़ा है कटिंग का भी टाइम हो गया
1: अभी तो बगीचो अनार कदे पकाओ तो
0: दो महीना लागे दो महीना
1: और लागे
0: 2 महीना बाहर जाए सीधा 12 भाव मोटा भोपारी 20 भोपारी हुआ आगे पसंद का भाव है जो कर लाई एना डायरेक्ट जा रही है मंडी है मैं जिमाना बाहर में बहुत बड़ी मंडी है
1: तो अन्नाराम जी जो कैटेगरी री बात करा तो कई कई
0: क्वालिटी और अब क्वांटिटी मत जावना तने कई तरह रहे जो और घणी है केसरी अनार सिंदूरी कलर मतलब देखो तो कई तरह मिलवे मिले
1: अपन रेड जो को बगीचो है इमे पचे किस
0: किस्म लगा अनार है चार तरह की किस्म
1: इन तरह री देखो के किस्म अलग अलग लगावड़ी
0: अलग अलग किस्म अलग अलग रेट है
1: इन पर मोटो साइज में छोटे मोटे
0: हां बिल्कुल पहले तोड़ो दूजो तीजो चौथो
1: अन्नाराम जी चालता यूं विचार करा के कोई

0: भाई यूं देखे कि भाई अपारे पानी रो स्टॉक कर और बरसात रे पानी हुई जे बागवानी री फसल लेवाए अनार लेवाए और कोई लेवा तो बन कहीं कहीं हावचेती राखनी पड़े। आप इन बारे में कहीं कहना चाहो?
1: देखो किसान ने सावधान रखनी चाहिए, बहुत जरूरी के पहल पो तो जटा पर मतलब पानी आ रही हो बरसात रो, मतलब भी कुन्ना वहां बन खेत रो अपन ने नोले जोनो चाहिए भाई। डाल उगी अटे पानी आवे बट पक्की भाव है ना, बट आप कने भाई थोड़ो करो अपन सुविध अनुसार करो करो या पावड़ो किंकर बट बना रहे बड़ो पानी इकट्ठो करना
0: पानी इकट्ठो करना पड़े
1: इकट्ठो करना
0: ढलान में।
1: ढलान की जगह में लो और बार कर अपन इकट्ठो करने बने लोगों ने भाई तिरपाल जड़िया में मतलब इंच अनुसार सस्तो सस्तो मोटो अपन सुविधा देखनी हो
0: हाँ हाँ सुविधा
1: बैठो
0: अनुसार।
1: अपन एक प्लास्टिक नीचे मैन रख और ऊपर वो भी ये तो देखी गर्मी में मत कोई फाटोड़ी बोरिया धोरिया नाक देनी या रेत नाक देनी वो बड़क वो पानी यहाँ पर जब बरसात में कमी आवे तो आप फुहारा पा तो चला सका।
0: पाँच फुहारा हूँ चला सका इन तरह है जो भाई लगा सके। इनमें मेहनत री खुद नहीं कहीं करनी पड़े देख रेख
1: हाँ मेन मालिक देख रहे करे तो एक अलग
0: भाई,
1: ही
0: या
1: बात रहे,
0: पते मजदूरान भरसे ही रेवे
1: मजदूर भरसे रिया काम कौन चले,
0: भरसे काम कौन चला है
1: कोई भरसे काम कौन
0: भाई
1: खुद
0: खुद।
1: ने 2 भाई 5 दिन 10 दिन और काम मजदूर एड हुए विश्वासी भाई यहाँ पर घर को जान करे तो मामलो जमे। मैंने मजदूर तो था टाइम टाइम देखने है
0: बस
1: कि
0: भाई
1: सुबह
0: टाइम हुआ
1: नौ
0: है।
1: बज गई है शाम 5:30 6 बज गई है यहाँ काम कौन चले।
0: बिया चले
1: मैं यहाँ
0: चले।
1: पर जो पानी दे रही है आज अनार में 5,000 पौधा मान लो ये तोरे देना बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई है बूंद बूंद एक एक घंटे पानी दा तो 5,000 पौधा में अपन टाइम की तो लागे
0: टाइम लागे
1: बहुत टाइम लगे।
0: तो बूंद
1: सुबह अपन
0: बूंद। हाँ
1: सुबह शुरू हो ना अपा मान लो 7 बजे तो रात्रि 8:30 बजे पूरा पौधा कंप्लीट हुए और आधा आधा घंटा देवा तो थोड़ा जल्दी
0: बूंद बूंद जकी आ विधि है भी वना राम जी पानी री भी दूजी
1: बहुत
0: जकी विधि
1: बचत हुए
0: अपन
1: हो
0: बचत है।
1: बहुत बचत हुए बचत नहीं बहुत बचत होगी
0: बहुत बचत
1: और
0: हुए
1: बाल्टी में टेंगरा बट पानी का ना गला पौधा फिर टेंगरी कोने के लिए इतना मोटा
0: कणे फूके और जब फुहारा देवा तो पानी ज्यादा लागे। फुहारा
1: बहुत मतलब फुहाराओं भी पानी है ना ज्यादा
0: बूंद बूंद
1: लागे
0: वाला फुहारा है
1: नहीं बहुत थोड़ा ज्यादा लागे। मैं थारे सिंचाई में काम दे दे जो गाँव है सरसों है आम है
0: बा में काम दे
1: या
0: देना
1: कोई मूंग बाजरे
0: पौधा में बचा बूंद बूंद कई पौधे माथे माथे ले हर
1: नहीं नहीं
0: पौधे
1: नहीं पौधे दूर
0: पौधे
1: मतलब भी
0: दूर।
1: जड़ देखने अपन खोद कम से कम पौधे दोनों तरफ 1.5 फुट 1.5 फुट इन साइड ड्रिप रखनी 1.5 फुट इन सेंटर होना पौधा
0: तो दूर जो को वो पानी हो बिर जड़ में जाप रहे
1: बस जड़ खांच भी पौधे री जड़ है ना वो अनार एक एड़ो पौधे कांटे लो इरो जड़ है जगह पर साइड में जाए
0: साइड में जा
1: यार
0: रहे।
1: आमने एरिया में कांटेदार पौधा लगे जो देख लो अनार है बोल्डी है बेर और नींबू है और एक बार कांटा बेल हुए नहीं कोई भी तरह लाग दी पर कांटा वाला पौधा
0: ये पौधा अपन जमीन में माने
1: माने आमने एरिया बहुत मान रही हो यहाँ तुम्हें
0: तो
1: लगे लोगों की ओट कोई अनार हुआ कहीं तिहान है बयान है लोग घने हंसता अब कहीं कंटेनर भरी जाए हगी लोग है जगह कट्टो ले रहा है कि मानस जी 20 किला कोई कह
0: ओ
1: 30 किला कोई कह 5 किला
0: तो वासा अनाराम जी आप तो जोरदार है जो कही
1: बहुत
0: करी
1: बहुत
0: आपने
1: धन्यवाद
0: विचार
1: थाने
0: बताया
1: थे
0: हो
1: भी टाइम निकले हो
0: आपने
1: और कोई
0: धन्यवाद। राम राम सर।
1: राम राम सर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो है अन्नाराम जी, आपका आने को बताया और आगे कहीं बातचीत है।
7: हमें लारले सप्ताह को बयान सवाल बुझियो बारी बिंडे पड़ू तरी सवाल बयान बुझियो कि मधुमक्खी पालन कोई एक लाभ है जो को तो मधुमक्खी पालन जो को अगला मोटो लाभ है वो पोषण युक्त है जो को शहद
6: और आज को प्रश्न बोला दो
7: लगे हाथ पारी आजरे सवाल री आजरे सवाल बयान बात मोटरी किणी एक उन्नत किस्म रो नाम बताओ। भाई लोग है जो मोटरी किस्म रो नाम बताई और हमें कई विचार।
6: अब देखो बाजार भाव बताओ भैया ने, तो मूंग बिके आज 5,500 लगा 7,600 तक, तो काला तिल की बोली लगी 9,000-9,500 तक, सफेद तिल बिके 10,000-11,500 तक, ज्वार की बोली लगी 4,500-5,500 रुपया तक, ग्वार भी क्यों तंग 5,000-5,800 तक,
7: तारा मेरे भाव 5,500-5,000 है जो को 750 तय रिया और

0: सरसों रा भाव रिया 7,400 रुपया कुंटल, जीरे रा भाव 17,000 लेने 21,800 ताई रिया, और दाना मेथी 5,800 लेने 6,100 ताई बिकी। इस अब गोलरी बोली 9,000 है 13,800 ताई लागी, एर सौंप रा भाव रिया आज 7,000 लेने 13,000 रुपया कुंटल।
1: और रणवीर भाई चना बिकिया 5,325 रुपया प्रति क्विंटल, तो असाड़िया की बोली लगी 5,800 लगा 6,100 रुपया प्रति क्विंटल, और सिंधी सुबह भी क्या 6,000-7,600 रुपया प्रति क्विंटल की दरों।
0: ऐ तो यार अगोर मंडी का भाव, और हमें मनोज भाई कहीं विचार,
1: अब विचार कहीं मनोरंजन के रूप में कोई आज भजन भजन सुनाओ।
0: हाँ, हिंजारो टाइम तो हरिनारायण शास्त्री भी गाइडो सुनाओ, और भजन

0: मन वा कुसंग में मत जाए। हरिनारायण जी शास्त्री रू गायडो है, देखो भजन भाया था पुग्यो भजन थोड़ो जी तो मीठो और हमें बारी सीख री। तो आज री आई सीख गुणवत्ता युक्त अधिक उपजरे वास्ते अपनाई ये कृषि की उन्नत तकनीक इन्हें सीख रे सागे अपना आज रे किसान वाणी कार्यक्रम में टाइम पूरा हुआ। आप रणवीर भाई
1: और मनोज भाई ने जीरो सीख
0: करा राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं।

0: जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
6: आओ चलो आओ।

0: सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं

0: अल काहिरा।
1: हाँ
0: पापा पापा हुँ? वो देखो नील नदी है ना।
1: हाँ वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा घर में एक नौकर है वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें मैं शाम को आऊंगा फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
2: नहीं अभी नहीं शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूं।
1: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए।

0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
1: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो, आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में

0: भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
1: पूछिए।
0: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी नागौर का ये चर्मी चैनल है, रात्रि के 8 बजे है। नीचे सुनिए एल्बम सॉन्ग्स। आज के इस एल्बम सॉन्ग्स के कार्यक्रम में हम आप

एल्बम सॉन्ग्स में अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम के गाए कुछ एल्बम सॉन्ग्स। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। निजे सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम घुमर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं करीम खां खिजड़ला के गाए कुछ लोकगीत, और यह है पहला लोकगीत। आवाज़ करीम खां खिजड़ला की है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घूमर, जिसमें आप सुन रहे थे करीम खान खेजड़ला के गाए कुछ लोकगीत। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संदेश से हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6

0: हजार हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
8: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का जन्म चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गायी कुछ गजलें, और यह सुगम संगीत की पहली पेशकश चंदन दास के ही स्वर में है।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं चंदन दास की गायकी को सुगज लें, और यह है सुगम संगीत की अगली पेशकश।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गायी कुछ गजलें। FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं, अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: कोई प्यार की देखे जादूगरी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कोहिनूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शकील बदायूनी ने इसे लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

सुजाता फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, एसटी वर्मन ने धुन बनाई थी। इस गीत के पहले आपने किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत सुना था जिसे हमने लिया था फिल्म एक राज से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। और अब सुजाता फिल्म के इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

0: आज मोरी अंगना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था।

0: आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहाँ अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।
1: हम और तुम और ये खुशी।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

0: हिंदुस्तान हमारा है, पूरा जो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

0: 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।
1: कच्ची है।

सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

खास बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, हमारे आज की ये सभा में संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद।